0: जी हाँ, झूलेलाल जयंती जो होती है वो चैत्र के महीने में होती है। दे सिंधी हिंदूज दे सेलिब्रेट झूलेलाल और उदयरोलाल का जो फेस्टिवल है, पैट्रन्स उनके सेंट हैं वो झूलेलाल, और ही इज सपोज्ड टू बी इनकारनेशन ऑफ वाटर गॉड वरना। और ये गाना बहुत ही पॉपुलर था लेट 70s और 80s में, और इस गाने का ओरिजिनल जो डिस्क्रिप्शन मैंने देखा है वो लिखा है कि ये अमीर खुसरो ने 13th century में लिखा था, उसके बाद बूले शाह ने 18th century में इसको मॉडिफाई किया था। सो इट वॉज पद्मा'स वेरी फेवरेट सॉन्ग विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड इट वॉज अ वेरी कैची फास्ट पेस्ड नंबर।
1: हाँ, पद्मा जी हमेशा ये गाना रिक्वेस्ट करती थी जब चेटी चांद होता था। और अगला गाना पेश कर रहे हैं, आई थिंक बिफोर दैट आई लाइक टू शेयर सम ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल आर कम्युनिटी मेंबर्स हु हैव रिस्पोंडेड टू द न्यूज ऑफ हर पासिंग अवे, एंड वन विच रियली कैचेस आवर हार्ट और पुल्स एट आवर हार्ट स्ट्रिंग्स इज द नोट बाय कमलेश देसाई जी, कमलेश जी। And Kamlesh ji rightfully posted that her voice may have fallen silent, but the music she brought to the Hudson Valley will never fade. The memories she shared, the rhythms she carried, and the love for Indian music she nurtured will continue to float through the airwaves, a beautiful, enduring presence among us. So thank you, Kamlesh bhai, for this beautiful sentiment. And let's enjoy Padma's legacy, her show, the Geetmala show. And let's hear one of her other favorite songs, which she has recommended, which she had requested, rather, during my last 5 years running this show. And that's from the movie Aradhana. And this is Mere Sapno Ki Rani. So let's listen to this nice song.

0: जी हाँ, बड़ा ही सोलफुल गाना था ये। और पद्मा जी के बारे में थोड़ी और स्टोरी शेयर करूँगा। जब यहाँ मूव हुई, उन्होंने काफ़ी सर्जरीज कराई अपनी जो लिमिटेशंस थी जो उनकी पूरी करने के लिए, फिर लैरी से मिली किसी सोशल वर्क के थ्रू, एंड दैट्स अनदर स्टोरी, यू नो। फिर वो फिर कभी बात करेंगे। वो पहलती जब पहले वो लैरी के साथ उनकी शादी हुई, उसके बाद जो न्यूयॉर्क सिटी में रहती थी मैनहट्टन में, हर संडे जो है वो हर संडे को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हिंदी गानों का प्रोग्राम आता था, वो सुनती थी हर संडे के संडे। देन इन 1997 शी मूव टू ऑरेंज काउंटी एंड शी मेट सम पीपल एंड सो शी गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द रिवेसर कॉलेज रेडियो, यू नो, रेडियो स्टेशन। इनिशियली उन्होंने बोला नहीं, अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर वो लिखा उन्होंने एक इंटरव्यू में कि कुछ ही दिनों बाद उनका फ़ोन आ गया, नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। तो उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ पे वेसर कॉलेज रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम शुरू किया। देन रेस्ट इज हिस्ट्री, एज वी ऑल नो।
1: एंड टॉकिंग अबाउट को होस्ट, आई वॉज थिंकिंग आई मे फॉरगेट समबडी, बट आई डिड फॉरगेट लक्ष्मण जी। लक्ष्मण पराशर ऑल्सो वॉज अ होस्ट, एंड वी गॉट अ कॉल फ्रॉम जेरी हु was a host with Padma, and through Vish, I think Vish was one of Dutchess County resident who listened to Padma's show and got involved with it, and would call, as per Padma, would call her every show, every program. And share with her the news about Indian cinema and Hindi films. And Padma would always remember Vish fondly. And Jerry would like, he called and would like to share with our listeners that he's so very proud to know Padma and of the opportunity she gave him. And he's proud to be part of the Geetmala family. And talking about Jerry, we do wish you a very happy birthday.
0: Yeah, Jerry, you know, I mean, he's not an Indian, but he, I think he got connected with Padma because he, I think some of the previous listeners, or like Vish and all the other listeners, they used to work for IBM, and Jerry bhi IBM mein kaam karta tha. Plus, he was a part-time DJ, I think. That's how he got involved with Geetmala and hosted shows several times and has contributed towards during Pledge Drive as well.
1: तो अगला गाना वी वुड लाइक टू लिसन इज अगेन अ सोलफुल मेलोडी, एक प्यार का नगमा है, अगेन वन ऑफ पद्मास फेवरेट सॉन्ग्स। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर मैसेजिंग एंड कॉलिंग एंड अप्रिशिएटिंग द सॉन्ग्स, एंड वी ऑल कलेक्टिवली आर पेइंग अ ट्रिब्यूट टू पद्मा बेन।

0: जी हाँ, ये गाना तो विदाई का गाना था. अश्विनी महाजन जो पद्मा के साथ काफ़ी सालों से उनकी जो दोस्ती है, जो उनका बॉन्ड है, उनके साथ जो रिश्ता है, उन्होंने फ़ोन किया, उनको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली. एक कहते हैं, बोल रही अश्विनी जी ने बोला, आई माइट एंड अप पैराफ्रेजिंग इट, बट पता नहीं कौन सी गाड़ी से पद्मा चली गई लेकिन बहुत सारी यादें छोड़ गई. हाउ ट्रू इट्स फॉर एवरीवन. आई थिंक यू नो द जर्नी ऑफ लाइफ इज सच दैट पीपल लीव विद इट ऑन ए ट्रेन विच इज इनविजिबल.
1: बट आई थिंक द होल कम्युनिटी इज शॉक्ड बिकॉज दिस वॉज सो सडन. वी डिड नॉट एक्सपेक्ट पद्मा बेन टू लीव अस सो सून, बट लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल. एंड अश्विनी वॉज ऑलमोस्ट सो सैड एंड teary-eyed, and she said she has so many personal memories with Padma Bain. She was such a dear friend and confidant, and she cannot even recount all the memories she had with Padma Bain. Ashwini ji, yeah, I'm sure you have lots and lots of stories about Padma Bain which we haven't heard before, and I think I would like to invite you and you could come and do a show here again, sharing some of our memories. That would be really wonderful.
0: Yeah, you know, Ashwini ji, they did some fundraising.
1: So many shows together.
0: And, yeah, maybe come one day and you know, share some memories with her.
1: And also stars. When Padma ji would go to Florida, and then Ashwini, Varda and Seema and Jerry would do the show.
0: Right.
1: So we were talking so much about Padma, and we would like to

0: जी हाँ, पद्मा बेन के बिना ये शो बहुत ही अधूरा अधूरा सा लगेगा, बट थैंक यू पद्मा बेन फॉर गिविंग अस दिस शो. वी कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल शो, आर एंटायर कम्युनिटी, एंड वी होप टू कैरी दिस योर लेगेसी फॉरवर्ड फॉर मेनी मेनी ईयर्स टू कम.
1: जी हाँ, जो पद्मा का जो संगीत के जो उनकी रुचि थी, बचपन से ही वो गीतमाला सुनती थी. फिर एक और उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी कि जब वो न्यूयॉर्क सिटी में रहती थी मैनहैटन में लैरी के साथ शादी के बाद, तो वो हर संडे कोलंबिया से हिंदी गानों का, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हिंदी गानों का प्रोग्राम सुनती थी. उसके बाद वो लेट 90s में शी मूव टू डच ऑरेंज काउंटी, देन शी गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट दिस वंडरफुल शो.
0: And Padma Bain was also very, she would get a little upset when we said, oh, Padma Bain, we don't have a host for this Saturday. It's difficult to find somebody to host the show. And she would say, I would come every Saturday driving across the river to do this show without fail, rain or shine, I would do the show. And that's so true. Her commitment to the show was amazing. So listeners, let's celebrate her and enjoy a couple more of her favorite songs. As I said before, she loved old and new songs. She kept in touch with the latest pop songs, latest Hindi music. And one of her newer favorite singers was S.P. Balasubramaniam, great singer. And she would love playing the songs from his movie Sajan. बहुत प्यार करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ पद्मास फेवरेट सॉन्ग संग बाय एसपी बालसुब्रमण्यम.